मैंने कुछ मने कुछ पसंद नंबर आया कि ना बयान देखी तंगेरा वो एने ने इरोना अरे अनाग ने बेरे कांदे एसटीए सिग्नस अंदर ताई यंगन नंग मंगल कोर्गी ना कुंतेरुन करेगे ना कोनो मैं कपेने नंबर आम नंबर कोंगराने किरपसिंग कई